रेडियो ने जितने भी लिसनर इसल सुनी रहे उनकी वेलकम टू द शो। तो जनाब तुस मैसेज करी सकने हो फेसबुक ने ऊपर साड़ा व्हाट्सएप ना नंबर और ना फोन नंबर भी मुगल साहब फोन के दासा जी पसंद करी रहे गाने से जी नए नजारा कोई गीत सुना जरूर सुना क्यों ना सुना सा जी तो जर चौधरी खो कल्या चौधरी

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Lazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, lazeersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: Accident ho gaya, rapa rapa. अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571-009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर रीटेस्ट बिल्कुल फ्री AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585
6: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

जी के लिए बनता है जी, ये तो सारी मर्जी है जनाब, है कंजूसी ना कर सकते शेयर करने च जितने भी तुसा संगी बेली दा दोस्त सुनी रहे हो तुसा सस्ते जनाब तुसा की वेलकम भी आखना होना सत बिस्मिल्ला जी है ना भी आखना सोने दा मनमोनियो हुन जुले नेक्स्ट ट्रैक नहीं जाना दिया जी जी बाकी जितने सारे दोस्त जनाब सुन रहे हो चंद जमान मुगल साहब जनाब राजा रब नवाज साहब चौधरी जुल्फकार सईद साहब शकील भट्टी साहब यार साहब अनीफ साहब जितने भी संगी दोस्त सुन रहे जी रिजवान ऑफ टिंजली जनाब मेरे बड़े प्यारे वीर उन्होंने नाम भी औरंगजेब साहब चौधरी मुश्ताक साहब जोएब गुजर साहब रेडियो ने तुसा लिसनर सुनी रहे हो लिंक एफएम ने और जितो जितो भी सुनी रहे हो सारे परदेसी भैया ने ना जनाब

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: ए ए लड़की, चाबी दे दे। चाबी दे दे वरना अंदर कर दूंगा।
1: हाय हाय हाय हाय,

समीन, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है कवाली शो में, और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम पेश करते हैं हम। आपकी डायरेक्ट कॉल्स तो नहीं ले सकते, लेकिन आप फीडबैक के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 07939849339।

0: एंड एयर कंडीशनिंग। अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज, फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
1: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station,
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
11: My name is Rizwan Ishraq.
12: My name is Asham.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.
15: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जो ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है रोज। सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।
1: समाअत फरमाएं नाते मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।

आप में सब किस किस की तमन्ना है कि पहले बगदाद शरीफ हाजिरी हो और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी हो। माशाल्लाह सबकी है, जरा दुआ के साथ मांगे।

ब्रेक के बाद आप तमाम को खुश आमदेद कहते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main haan Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 014-308-2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazeer Solicitors is Trading Style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 30.

0: 1999, diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: Khush Ikhlaq Amla Lajwab Service AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us
5: Welcome
4: on
5: back
4: Facebook.
5: After the break, तमाम सुनने वालों को एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं. मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और यह है क्वाली स्पेशल. और इस क्वाली स्पेशल में हमेशा हम आपको मुख्तलिफ कलाम सुनाते हैं और अब ब्रेक के बाद चलते हैं अगले कलाम की तरफ.

झगड़े छड़ दे दिल नूए समझा ले बुल्ले वांगू कंजरी बन जा पैर इश्क दी झांजर पा ले जे मन जे रुसिया यार तेरा

0: Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
1: My name is Shireen.
4: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Today, tomorrow, every day, Sheffield's Link FM.

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. Busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल ही नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ये एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: एएमओटी वाले हैं किधर?
7: एएमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं करो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

0: है सदा, तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: Link FM, your number one community radio station.

such. बहुत ही अजीबो गरीब होता है ये सच अक्सर. असामान्य अद्भुत कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है ये सच अक्सर. वो सच जो हमें नया लगता है अनजाना सा, एक झलक दिखाकर चौंका देता है जो हमें, उसे अजूबा मानने लगते हैं हम अक्सर. सच वो भी है जो अलौकिक है, हमारी समझ के बाहर, और उसी का डर लगता है हमें अक्सर. और सच का नकाब पहने हुए कुछ नामुमकिन किस्से आहिस्ता आहिस्ता वाकई सच बन जाते हैं अक्सर. ऐसा ही एक नामुमकिन किस्सा, असामान्य अद्भुत अकल्प अनदेखा अनजाना अपरिचित किस्सा, सच होने जा रहा है एक खतरनाक सच. The dangerous game is about to begin.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
18: और हर सूर दिल को छो जाए,
19: वही है Link FM.
17: दिल से आपके साथ
19: Link FM.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Naseer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330057109 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786786 2585।
6: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
3: मैं और रणदीप चौधरी।
4: मैं असलम भुट्टा।
5: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
6: मेरा नाम शफाक हुसैन क्यानी है।
7: मेरा नाम अहमद अस्करा।
8: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
9: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
10: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Sheree.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Community radio for Sheffield.
17: This is Link FM.
18: Cook Studio, Season 15.

0: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल
1: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम। दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM. Link FM.
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
2: You are listening to Link FM.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
4: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Lazier Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
1: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने भावे कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो फोन नंबर 0786-786-2585.
9: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।

0: की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: If you would like to promote your business on LinkFM, our team can help you. Contact us on 0114-261-8182 or email us on info@linkfm.org.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
2: Link FM.
0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
3: Link FM Sheffield.

0: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8182.
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Community Radio for Sheffield. This is Link FM.
0: हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ
2: Link FM

0: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
1: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: 96.7 लिंक एफएम,
2: music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day,

0: News, health, sport, educational programs, and much more, only on Link FM.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ
2: लिंक FM Sheffield.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ
2: लिंक FM Sheffield.

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल
3: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM. दिल से आपके साथ
4: लिंक FM Sheffield.
5: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
6: और हर सूर दिल को छो जाए,
4: वही है लिंक FM.
3: दिल से आपके साथ
4: लिंक FM.

आप अपनी आवाज हक के लिए जरूर बुलंद कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको इसका हिसाब देना होगा कि अगर आपने जुल्म के आगे खामोशी इख्तियार कर ली। अभी हम उसी महीने में है कि जिसका सबक यही है कि ताकत हक नहीं है बल्कि हक ताकत है, और एक ना एक दिन हक को बुलंद होना होता है और वो होके रहता है, और एक ना एक दिन ताकत को जवाल होता है और वो होके रहता है। तुमसे पहले भी यहाँ एक शख्स तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। आइए सामीन अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं कैफी आजमी की एक खूबसूरत गजल से। गजल है आप सभी सुनने वालों के नाम।

और सभी नबी आप ये गजल सुन रहे थे, आवाज थी मोहम्मद रफी की। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 पर। 1439 के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेप पे भी सुनते हैं, जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुन सकते हैं। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
3: लिंक FM शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
18: लिंक एफएम शेफील्ड.
15: दिस इज लिंक एफएम.
19: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: 314-414-360।
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 अरूली एवेन्यू,

और सभी अब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदीद। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 www.bradfordasianradio.co.uk की हमारी वेबसाइट, और यही नशात इस वक्त आप अपने लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पर भी सुन रहे हैं, और यही नशात आप CVFM मिल्सब्रा से 104.5 एफएम पे भी सुन रहे हैं। अजीन सामीन बात हो रही थी कि हर इंसान को कुदरत ने जीने का हक दिया है, और उस हक में बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, उसका रहन सहन उसमें शामिल होता है, उसके कुछ हकूक हैं, उसके कुछ फराइज हैं। और ये सब चीजें मिल मिला के उसकी जिंदगी को आगे लेके चलती हैं। बिल्कुल उसी तरह आज हमारे आजाद कश्मीर में लोग अपने हकूक के लिए निकले हैं, उन हकूक के लिए कि जिनके लिए वो तरस रहे हैं। ये मेडिकल सर्विसेज, चीजों की कीमतों में कंट्रोल, और लोगों को उनकी वोट का हक देने का जो एक सिलसिला होता है इलेक्शंस के जरिए, इन सभी चीजों के लिए लोग निकले हैं, और उन्हें कोई ना कोई नाम दे के तो ऐसी तरीकों को दबाने की कोशिश की जाती है। शायद उन लोगों की तरफ से कि जिनका इस कश्मीर की आजादी में कोई सिरे से ताल्लुक कभी रहा ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारा एक छोटा सा खित्ता है आजाद कश्मीर का, ये यहाँ के मकामी वासियों ने पाकिस्तान बनने के बाद आजाद करवाया, और इन लोगों को बखूबी इल्म है कि आजादी कैसे ली जाती है। ये वो नहीं है जो दूसरों की तरफ देखते हैं कि हमें कोई आजादी प्लेट में रख के देगा, ये जानते हैं कि किस तरह जालिम से आजादी छीनी जाती है। तो कुछ अकल के अंधे इनके साथ जोर आजमाई के चक्रों में पड़े हुए हैं। उसी सिलसिले में कल एक भरपूर मुजाहरा होने जा रहा है लंदन में, जरूर उसमें शिरकत कर सके तो कीजिएगा। जी हाँ, बुनियादी तौर पे बिल्कुल इसका किसी और हवाले से सिलसिला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बुनियादी इंसानी हकूक की तहरीक है, और लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं, सड़कों पे निकल चुके हैं, और इस तहरीक को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, और इसके जो चार मुमताज रहनुमा हैं उनके सरों की इवन कीमतें तक लगा दी गई हैं। वो लोग जो कश्मीर और पाकिस्तान से मुखलिस हैं, शायद उन ताकतवरों से ज्यादा मुखलिस हैं क्योंकि उन्होंने मुफ्त के तगमे के सीनों पे लगा रखे हैं, लेकिन सीनों के अंदर कुछ और धड़क रहा है। लेकिन इन लोगों के दिल मैं बता सकता हूं कि इस कश्मीर के लिए और इस पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, लेकिन उन्हें गलत रंग दिया जा रहा है। लेकिन वक्त साबित कर देता है कि कौन सही था और कौन गलत। एक वक्त आता है कि जब ये ताकतवर कहते हैं कि हम तो वो हैं ही नहीं, लेकिन जब ये ताकत के नशे में होते हैं तो फरौनियत की आखिरी हदों पे ये विराजमान होते हैं। आइए सामिन आपको एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं। एक बार फिर आवाज है सदाबहार मोहम्मद रफी की, शायरी है जीएल रावल की, मौसीकी है सोनी कौमी की, बहुत खूबसूरत आवाज रफी की। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर सर्रा सितारा, ये वादिये कश्मीर है जन्नत का नजारा।

आज चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा, ये वादी ये कश्मीर है जन्नत का नजारा। दोजख की तरह जल रहे हैं गम की धूप में, यारो इस खिताए जन्नत को क्या हुआ। जी हाँ, गुज़श्ता तकरीबन यूं कह लीजिए कि एक महीने से वहां पे अवामी एक्शन कमेटी, जो कि वहां के लोगों की एक बिल्कुल गैर सियासी जमात है, उसके जेर तमाम लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हुए हैं। और उस तहरीक में लोग, आम लोग, ख्वातीन, बच्चे, बहनें, सभी शरीक हैं। और एक ही उनका मुतालबा है कि यहाँ पे लोगों को जीने का हक दिया जाए, जिसमें उनके तकरीबन जो भी मुतालबात हैं उनमें से किसी भी मुतालबे को आप ये नहीं कह सकते कि ये मुतालबा जायज़ नहीं है। हर मुतालबा ही उनका जायज़ है, जिसमें तिब्बी सहूलियात, लोकल हॉस्पिटल्स में जदीद मशीनरी, बिजली के नर्ख कम करना, आटे की कीमतें कम करना, और सबसे बढ़ के वहाँ पे जो मकामी हुकूमत है उसे लोगों के, मकामी लोगों के हवाले करना, ताकि वो उनकी ज़रूरियात को समझ के उस रियासत का नज़्म व नक्श चला सकें। और इसी चीज़ पे सबसे बड़ा इस वक्त तनाज़ा खड़ा है कि जो 12 नशस्तें हैं, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ धांधली के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पे रखी हैं, कि जिसे चाहा उसे हुकूमत में ले आए, जिसे चाहा उसे उसकी हुकूमत तोड़ दी। तो वो ये, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि एक दरवाजे में पाँव रखा हुआ है कि ये दरवाज़ा बंद ना हो पाए, तो ये 12 नशस्तें, उनका सबसे बड़ा मुतालबा है कि ये ख़त्म की जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धांधली और ध्वंस के लिए रखी गई हैं। तो इतना जायज़ मुतालबा है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे कत्लेआम करना ज़्यादा अच्छा समझा गया है कि लोगों को वहाँ मार दो, दहशत फैला दो, ताकि लोग अपने हकूक से पीछे हट जाएं। हालांकि वो जानते ही नहीं है कि कश्मीरी कभी अपने हकूक से पीछे हटने वाली कौम है ही नहीं। इन्होंने अपनी आज़ादी भी अपने ताई ली थी, खुद ही अपनी मदद के तहत इन्होंने इस खत्ते को आज़ाद करवाया था, और यहाँ पे काबज फोर्सेस को इन्होंने उस वक्त भी निकाला था, और आज भी अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो सबसे बेहतर यही होता है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के जो जो जायज़ मुतालबात आप समझते हैं उन्हें जायज़ समझ के तो बात को ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ अकल के अंधे जो हर चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ ताकत से निकालते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ताकत के अलावा भी जो मुज़ाकरात होते हैं वो शायद ताकत से भी बड़ी ताकत होती है। उस तरफ ज़हन कब जाए, जब सर से ये बोझ उतारा जाए, जो कि 4-5 किलो का बोझ होता है, ये हर वक्त जब इनके सरों पे रहता है इनके दिमाग घूम जाते हैं। ये उतरेगा और इनके गले से सरिया निकलेगा तो इन्हें होश आएगा कि दुनिया कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं।

और सामीन अब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 एम पर, लिंक एफएम शेफील्ड 96.7 एफएम पर और सीवी एफएम मिड्सब्रा 104.5 एफएम के जरिए हमारी एक खसूसी नशात। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। और जी सामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये सभी रेडियो स्टेशंस आप सुनने वालों की उमंगों के तर्जमान होते हैं। आप जो कुछ चाहते हैं हम इन नशात में उन सभी चीजों को शामिल करते हैं। और अगर पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में बेचैनी होती है तो हम भी उससे अलग नहीं रह सकते। और आप जानते हैं कि गुज़श्ता एक महीने से जो सूरत-ए-हाल वहाँ पे चल रही है उससे हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। हमारी यहाँ पे ब्रेडफोर्ड में यूं कह लीजिए कि तकरीबन 1.5 लाख की आबादी है और इसमें अक्सरियत मीरपुर से ताल्लुक है उनका, कोटली से है, मुजफ्फराबाद से है, बाग से है, रावलाकोट से है। और उन लोगों के दिल अपने उन्हीं बहन भाइयों के साथ धड़क रहे हैं जो इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। और उसी हवाले से कल बतौर बरोज इतवार लंदन में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है ताकि दुनिया को बताया जाए और मुतल्लिका हुकाम ताकि मैसेज पहुंचे कि जो कुछ वहां पे हो रहा है वो सही नहीं है, उस पर वो नजरसानी करें और उन लोगों के लिए आवाज बुलंद करने का एक मौका है, जरूर उसमें हिस्सा लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे साथी जनाब आशिक फिरदौसी साहब, अगर उनके पास वक्त हुआ तो थोड़ी देर में उनसे भी हम मुख्तसरन बातचीत करेंगे। मुझे पता है कि खासे मसरूफ होंगे इस वक्त वो,

और समीन अगर इसके साथ साथ आप आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677।

0: और जी हाँ सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर, 1430 AM के साथ साथ ये नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए। और कोशिश कर रहे थे कि हम आशिक फिरदौसी भाई को ऑन दायर लें, लेकिन उन्होंने वादा किया था, लेकिन अचानक उनकी कोई और मसरूफियत, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कल का यूके का मिलियन मार्च है उसमें वो बड़े नुमाया हैं, उसी मसरूफियत के बायस इस वक्त वो अंदायर नहीं आ सके। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त उनके जज्बात क्या हैं, हम सभी के जज्बात क्या हैं, हम सभी के तासरात क्या हैं कि कल का प्रोटेस्ट अगर हमने कामयाब बनवाया तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे असरात आएंगे। और बैक होम जो हमारे बहन भाई इस वक्त तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस मुश्किल दौर से, जिस मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, उसके लिए अगर हमारा वहाँ पर जाना उनके लिए आसानी पैदा कर दे तो इससे बढ़ के कोई अच्छा हो नहीं सकता। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तहरीक टोटल इंसानी हकूक की एक तहरीक है जिसमें किसी सियासत का लेना देना नहीं है, कोई दखल नहीं है, इसमें लोग अपने बुनियादी इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, अशियाए ज़रूरिया की बात कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा अपने वोट के हक की बात कर रहे हैं कि जो हमारी वोट का हक है उसे तस्लीम किया जाए, ना कि हम पे ऐसे ही मुफ्त में 10-15 आके बिठा दिए जाएं और जब चाहें आप हुकूमत बना दें, जब चाहें आप हुकूमत तोड़ दें, स्टेट ना हुई एक तमाशा हो गया। इसी हवाले से एक भरपूर कल एहतजाज का एहतमाम किया गया है लंदन में, जिसमें कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिसे अभी तक का कहते हैं कि शायद यूके की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कल होगा, और जोक दर जोक काफले जा रहे हैं, कोचिज बुक हो चुकी हैं, और अब जितने भी दोस्त हैं वो ज़्यादातर टैक्सीज का एहतमाम कर रहे हैं। तो एक मौका है कि जब बैक होम आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, आपकी यकजहती का इजारी, यकजहती का एक मुजाहरा होना चाहिए कल, जिसमें आपने अपने उन बहन भाइयों के लिए।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अज़हरवी और तुसा सुन रहे हो लिंक FM।
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की एमओटी नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की एमओटी एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की एमओटी का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीव शेफील्ड S92VE। गुलाम कादर साहब से अभी राबता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
6: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
7: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
8: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm 96.7.
9: 96.7 Link FM.
10: You are listening to Link FM.
11: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM
12: 967.
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
13: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
15: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
16: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
15: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
16: मैनिंगम सुपर स्टोर।
17: You're listening to

और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदेद। जी हमारा और आपका इस मुख्तसर से प्रोग्राम में मजीद तकरीबन 25 मिनट का साथ है। कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677। और जी हाँ, कल के प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं। याद है पाकिस्तान में हम जब बचपन में देखते थे, पढ़ते थे कि कल सारे काफले एक ही तरफ होंगे, वही है कि कल जितने भी काफले होंगे इंशाल्लाह लंदन की तरफ रवा दवा होंगे। हर शहर से कोचिस जा रही हैं, बसेस जा रही हैं, टैक्सीज जा रही हैं और कुछ लोग शायद ट्रेन्स के जरिए भी जाएंगे। एक मौका है आपके पास के बैक होम अपने बहन भाइयों से सारे यकजहती के लिए आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर है ये मुजाहरा या उसके कहीं आसपास, जिसमें लाखों हजारों लाखों की तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी वहाँ पे जा रही है और लोकल एमपीज़ जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, शरीक होंगे और कश्मीरियों के साथ अपना इजहार यकजहती करेंगे। हवाले से हम बात करना चाह रहे थे आशिक फिरदौसी भाई से, उनसे व्हाट्सएप के जरिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी लेकिन उनकी शायद कोई जरूरी कॉल पाकिस्तान से आ गई थी, यकीनन कल के प्रोटेस्ट के हवाले से ही, तो उन्होंने थोड़ी सी हमसे माजरत कर ली है। देखते हैं कि अगर दोबारा उन्हें वक्त मिला तो हम उनसे जरूर बात करेंगे। सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर।

0: और जी हाँ सामीन, अब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम और रेगुलर कॉलर है जनाब नवीद साहब, स्वीडन से तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई।
1: जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कैसे हैं?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? ठीक है
1: जी, अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं आपकी बड़ी मेहरबानी। तमाम दोस्तों को मेरा अदब बड़ा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और खुलूस और फकीर अब्बास साहब हैं लिखने वाले।
0: जी जी जी, इनायत कीजिए, कुछ लगता है गजल लाए हैं आप।
1: जी जी
0: जी जी, इनायत
1: कीजिए। कलाम जितनी गुंजाइश हुई वक्त के दामन में,
0: जी जी,
1: तो जब मरती हुई तहजीब भी और उसके निशान भी,
0: क्या कहने,
1: सदियों से यहाँ हम भी हैं ये खस्ता मकान भी,
0: क्या कहने, वाह वाह।
1: शुक्रिया रमजान जमाने की रवायत भी सफर में,
0: हाँ हाँ,
1: अनजान जमाने की रवायत भी सफर में, हमराह मेरे है खतो खाशा को जहाँ भी।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने क्या कहने।
1: और शेर सुनेगा सुनाई के, इस हिज्र से क्या जान छुड़ाऊं कि ये डर है,
0: हाँ हाँ,
1: इस हिज्र से क्या
0: जान छुड़ाऊं कि ये डर है,
1: आसार पे जाते हुए छोड़ेगा निशान भी।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और तुमने तो बिछड़ने में जरा देर नहीं की,
0: तुमने तो बिछड़ने में जरा देर नहीं की, आहा,
1: मिसरा देखिए कि तुमने तो बिछड़ने में जरा देर नहीं की, कुछ देर तो उड़ता है
0: चिरागों से धुआं भी। फिर से पढ़िएगा मुकर्रर, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत।
1: तुमने तो बिछड़ने में जरा देर नहीं की,
0: हाँ हाँ,
1: कुछ देर तो उड़ता है चिरागों से धुआं भी।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और मुमकिन है कि मिसरे में यही बात उठा दू,
0: आहा, मुमकिन है कि मिस्र में यही बात उठा लूं,
1: उठा दूं, एक साथ गिरा है तेरा मलबा भी मकां भी।
0: बहुत खूब बहुत खूब, ये बहुत ही खूबसूरत गजल है, क्या कहने।
1: एक साथ गिरा है तेरा मलबा भी मकां भी,
0: मकां।
1: मेरे करीब एक और थी वजह
0: जी जी
1: के,
0: इनायत,
1: और ये भी जरा मुंसर बात है कि गर्चे सौ बार गमे हिजर से जान गुजरी है।
0: जी जी इनायत,
1: गर्चे सौ बार गमे हिजर से जान गुजरी है,
0: जान गुजरी है,
1: फिर भी जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरी,
0: कहाँ गुजरी है, वाह वाह वाह वाह।
1: और आप ठहरे हैं तो ठहरा है निजामे आलम,
0: आहा,
1: आप गुजरे हैं तो एक मौज रवा
0: गुजरी है,
1: और होश में आए तो बतलाए तेरा दीवाना,
0: आहा, होश में आए तो बतलाए तेरा दीवाना,
1: दिन गुजारा है कहाँ रात कहाँ,
0: कहाँ गुजरी है। बहुत खूब बहुत खूब।
1: और ऐसे ये शेर सुनेगा, कमाल शेर है आपसे।
0: जी जी,
1: ऐसे लम्हे भी गुजारे हैं तेरी फुरकत में,
0: ऐसे लम्हे भी गुजारे हैं तेरी फुरकत में,
1: तेरी फुरकत में जब तेरी याद भी इस दिल पे गिरा गुजरी,
0: क्या कहने, जब तेरी याद भी इस दिल पे गिरा गुजरी है। बहुत खूब बहुत खूब।
1: शुक्रिया। और हशर के बाद भी दीवाने तेरे पूछते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: हशर के बाद भी दीवाने तेरे पूछते हैं वो कयामत भी गुजरनी थी कहाँ गुजरी,
0: कहाँ गुजरी है। मुझे जनाब नासिर काजमी की वो गजल याद आ रही है कि होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी, और ए दोस्त हमने तर्क के ताल्लुक के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी,
1: कभी कभी, वाह वाह वाह वाह।
0: जनाब
1: शाजी एक ना गजल गाई तो गई है, मेरा ख्याल है कि
0: जी जी,
1: मैं भी बागपति साहब लिखने वाले हैं।
0: जी जी,
1: कुछ अशार इसमें चीज है, ऐसी भी शायद गजल में शामिल नहीं है।
0: जी जी,
1: तस्वीर फरमाइएगा।
0: जी जी,
1: यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ,
0: आहा,
1: यूं भी तेरा एहसान है आने के
0: आने के लिए आ,
1: ऐ दोस्त किसी रोज न जाने के लिए आ,
0: वाह वाह क्या कहने, वाह वाह।
1: हर चंद में ही शौक को यारा ए तमाशा,
0: वाह वाह,
1: खुद को न तेरी मुझको दिखाने के लिए।
0: बहुत खूब। और कहते हैं कि ये अहमद फराज ने तो शायद 50 साल बाद लिखी है इस जमी इस काफिया रदीफ में, इन शायर ने तकरीबन 70-80 साल पहले लिखी थी।
1: शायद हजरत ने शेर ये भी थी गजल होगी, लेकिन फिर है ताल्लुक बागपति साहब,
0: बिल्कुल ऐसे
1: इसी पे तजमीन शायर
0: अहमद फराज ने इसमें तजमीन की है। जी जी
1: जी, रंजीश ही तो
0: दिल ही दुखाने के लिए,
1: तो उसी ये असल जो इनके अशआर इसी जमीन में है कि हर चंद में ही शौक को जा रहा है तमाशा,
0: वाह वाह,
1: सही मुल्क को दिखाने के लिए।
0: बहुत खूब।
1: कहेगा कि उम्र ये बरसात ये भीगी हुई
0: रातें,
1: ये उम्र ये बरसात ये भीगी हुई रातें, रातों को अफसाना बनाने
0: बनाने के लिए,
1: और जैसे तुझे आते हैं ना آنے کے بہانے،
0: جیسے تجھے آتے ہیں نہ آنے کے بہانے،
1: ایسے ہی بہانے سے نہ جانے کے لیے،
0: ہاں ہاں ایسے ہی بہانے سے نہ جانے کے لیے کیا کہنے،
1: مانا کہ محبت کا چھپانا ہے محبت،
0: واہ واہ
1: چپکے سے کسی روز جتانے
0: جتانے کے لیے، بہت خوب،
1: اور تقدیر بھی مجبور ہے، تدبیر بھی مجبور،
0: ہاں ہاں
1: اس کفنا عقیدے کو مٹانے کے لیے،
0: بہت خوب، بہت،
1: اور عارض پہ شفق دامنے نزدہ پہ ستارے،
0: ہاں ہاں
1: عارض پہ شفق دامنے نزدہ میں ستارے، یوں عشق کی تاکیر
0: بڑھانے کے لیے،
1: اور طالب کو کیا یہ طالب کو یہ کیا ان کرم کیا کہ ستم کیا،
0: واہ واہ
1: طالب کو یہ کیا ان کرم ہے کہ ستم ہے جانے کے لیے روٹ
0: منانے کے لیے، جانے کے لیے روٹ منانے کے لیے، بہت خوب بہت خوب، میرے پاس ایک خوبصورت غزل ہے شفیق سلیمی کی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، یہ کالج کے دنوں میں ہم نے پڑھی تھی اور اس وقت کی یہ غزل کہیں آج سامنے آ گئی کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے، بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے، اور کیسا تھا وہاں گرم دوپہروں کا جلسنا، کیسا تھا وہاں گرم دوپہروں کا جلسنا، برسات رتو کا یہ نگر کیسا لگا ہے، کیسا تھا وہاں گرم دوپہروں کا جلسنا، برسات رتو کا یہ نگر کیسا لگا ہے، اور دن میں بھی دہل جاتا ہوں آباد گھروں سے، دن میں بھی دہل جاتا ہوں آباد گھروں سے، سایہ سا میرے ساتھ یہ ڈر کیسا لگا ہے،
1: اور
0: ہونٹوں پہ لرزتی ہوئی خاموش صدا کا آنکھوں کے دریچوں سے گزر کیسا لگا ہے، جی جی ہونٹوں پہ لرزتی ہوئی خاموش صدا کا آنکھوں کے دریچوں سے گزر کیسا لگا ہے، اور سب سے خوبصورت شعر اس غزل کا کہ آنگن میں لگایا تھا بڑے چاؤ سے میں نے، آنگن میں لگایا تھا بڑے چاؤ سے میں نے، پھلنے پہ جو آیا تو سمر کیسا لگا ہے، جناب اور کچھ عنایت کیجیے، وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، تو آپ ایک غزل اور سنائیے، جی
1: جی میں آپ کو ایک گیت سناتا ہوں،
0: جی جی گیت آج لگتا ہے کہ کچھ گانے کا موڈ ہے، ضرور جی جی
1: کوئی پردیسی آیا پردیسی میں

0: हजारों दिल की एक थे तुम्हें कोई परदेसी आया परदेस में देश बनाया परदेस में कोई परदेसी आया परदेस में
1: जी जी मैं सुन रहा था, बहुत ही जबरदस्त गीत आपने गाया, क्या कहने, आप तो गायकी में भी कमाल करते हैं। बहुत ही प्यारा गीत था ना, कोई परदेसी आया, बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपना, बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी आपसे मुलाकात। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। और जी हां सामिन, अभी टेलीफोन लाइन पे स्वीडन से हमारे साथ थे नवीद राणा साहब, शुक्रिया अदा करते हैं इनका। और अब दमने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तकरीबन यूं कह लीजिए कि 7-8 मिनट्स रहते हैं। अब यूं करते हैं कि आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आएगा।

और समीन अब वक्त हो चुका है आप सुनने वालों से इजाज़त लेने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। और जाते जाते एक बार फिर आपको बताते चलें कि कल, जी हम बरोज़ इतवार 5 जुलाई लंदन में यूके की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है अपने कश्मीरी बहन भाइयों से हजारे यकजहती के तौर पे। उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा, अगर वक्त मिला तो ज़रूर जाइएगा और उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। और समीन अब इसी गीत के साथ अपने मेज़बान सैयद हसन को आज का रंग महफिल समेटने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Your number one for news in Sheffield. Link FM.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: ये तुसा की परेशान खलते हुए हो जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म की गाड़ियां नहीं एमओटी करने भाएं कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
6: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
5: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गाड़ी निकलो ते मौजा करो फोन नंबर 07 8 6 7 8 6 2 5 8 5.
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368, or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
8: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.